0: तुम्हारा जो भी काम हो मुझसे कहा कर, मैं कर लूँगा।
1: अच्छा बेटे, अब तो जाके सो जा।
0: आज मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं तुम्हारे पास सो जाऊँ।
1: आओ आओ बेटे, मैं तुम्हें सुना दूँ।

0: Cuban Petrolera.
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।